नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन तर्जिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्पशोभुष सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाभ चतुर्नम सूर्याय दक्षाधरणाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुमोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकाष्ठाय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाशतम् पुण्यव्यापृत शिशुनदो शिवलोके मामनवते श्रीन सामोदते प्रणय नमः।